0: तो हमारा जो प्रोग्राम हमेशा की तरह हम क्या करेंगे कि एक गीत साहिल ने कुछ साहिली से अभी एक्साइटेड कोई अच्छा कोई गीत हमारे लिए ढूंढा है इसलिए बजाने की कोशिश कर रहा है तो साहिल आपको हम समय देंगे तो साहिल इज गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फॉर अस और उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे और उससे पहले साहिल तो आपका जो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो आई गेस आप एक्साइटेड हो कुछ शेयर करने के लिए
1: नहीं अभी नहीं
0: जी हाँ तो हमारे जो क्रिसमस दिन that well but
1: bahut kharab raha
0: thoda zyada hi kharab tha anyways thoda out of expectation ho gaya tha we were hoping because hum jab crusaders utne dur normally pahunch jata hai then uska jo way back mushkil hota hai and then we were it's not that we were expecting a win but at least we were expecting a much better outing yani ki
1: kafi
0: close game but unfortunately aisa dekhne ko nahi mila but the other way agar dekha jaye to fifa world cup ye chal raha hai and new zealand nothing yet to play do jo uske bhi taiyari ho chuki hai na iran is there so I think it's good hum bhi game dekh payenge lekin kuch games ho chuke hain I think Mexico draw tha
1: this 2-0
0: and the next one was I think Canada na
1: then Canada there was 1-1 draw
2: US abhi bhi jeeta
0: hai abhi USA
1: yo Paraguay
0: 4-1 against Paraguay
3: last second goal
0: yeah to abhi next game kaun sa hai
1: next game
2: aap कल सुबह होगा सांझ को देखना है 4 बजे ऑस्ट्रेलिया का गेम है
1: ऑस्ट्रेलिया का गेम
0: Which is good. Socceroos, if I'm not wrong. Yeah, so jo kafi jo games bhi chal rahe hai. So and then All Blacks ka bhi game aa raha hai against France. Aur hamesha gatre dheeru apne ticket to le liya hoga. Kyunki jo log hamare tarah jo der mein ticket dhoondte nahi milta hai. Dheeru already ticket le chuka hota tab tak. Anyways, jo aaj hamara topic hai obviously sports nahi hai. And we'll go and we'll talk about the grand jo kirtan sandhya yahan pe. Aur jo log hame zyada karke Facebook pe dekhte hain, to we will be switching on Facebook after. दिस सॉन्ग तो चलो साहिल गीत सुनते उसके बाद भी हम एक ये जो इंटरव्यू करेंगे अबाउट 15 मिनट का रहेगा एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इससे जो जो ये जो कीर्तन संध्या आ रही है यानी ये जो सत्संग सनातन सत्संग बॉय से क्रश है जो ला रहा है तो उसके विषय में बात करेंगे और उसके बाद में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है हमने एक इंटरव्यू किया था डोमिनिक इज अ कैंडिडेट फॉर न्यूजीलैंड लेबर पार्टी तो हम वो भी आपको सुनाएंगे इट इज पार्ट ऑफ आवर केवाईसी यानी कि नो योर कैंडिडेट और हमारा जो मोटिव है जस्ट फॉर यू टू लेट यू नो अबाउट योर कैंडिडेट जस्ट to be aware of kya karta hai kya nahi and his views and opinion it's not a election campaign to abhi hum nahi kar rahe it's not that so we are just letting you know because hamara jo end goal rahega to encourage you to vote in the coming election to chalo sir geet sunte hain

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों साथियों आपके पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सह प्रोग्राम में मैं हूँ प्रेम डॉक्टर विनेश और ये हमारा 703rd एपिसोड है उन प्लेन से मीडिया और हमारे साथ आज दे रहे साहिल ऑन पेनलिंग प्लस जो शिवनील जी हमारे वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं जो लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन हो रहे हैं उसका भी शुक्रिया करेंगे और जैसे हमने पहले फ्रिक्वेंसी पे बोल रहे थे कि हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं हम स्वागत करते हैं धीरू जी को और संजय जी को हमारे से स्टूडियो में और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड कीर्तन संध्या ये जो पोस्टर आप देख रहे हो फेसबुक पे तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे पूरी जानकारी जो आपको देंगे काफी एक्साइटिंग है ये रहेगा 18th ऑफ जुलाई बहुत दिन नहीं बचा है तो इफ यू आर अगर आपका कैलेंडर फ्री है तो जरूर मार्क कर ले 18th ऑफ जुलाई और समय है फ्रॉम 7 पीएम तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि ये आ रहा है और आई एम श्योर द जो टीम है काफी जो मेहनत कर रहे हैं टिकट्स बेचने के लिए सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्टचर्च और कुछ टिकट हमारे पास भी है तो अगर आपको लेना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हो अदरवाइज जो भी जानकारी हम आपको देंगे तो चलो शुरू करते हैं तो धीरू जी आप बताइए कि आज आपका समय कैसे बीत रहा है
1: ओ समय तो बढ़िया है अभी तो हमारे भी नाती भी आए घर पे आज सैटरडे को तो दिन तो बहुत जिस तरह से कटता अभी तो
0: हाँ बहुत बहुत पूरा पूरा फुल ऑन बिजी करके रखा
1: हुआ फुल ऑन बिजी है फिर तुम जानते हो घर से काम भी करते हैं तो मैकेनिकल तो वो भी चलता रहता है तो बिजी
0: जी हाँ बिल्कुल तो धीरू जी एक क्वालिफाइड मैकेनिक है जो मैकेनिकल काम वगैरह है अगर आपको भी कुछ गाड़ी का कुछ इश्यूज है देन ड्यू कॉन्टेक्ट है धीरू और घर से भी कर रहा है तो विच इज गुड और संजय आप बताइए कि आपका दिन कैसे चल रहा है मुझे मालूम है आप काफी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो और अभी आप फीफा का पूरा आपके पास नॉलेज है
2: जी जरूर जरूर सुबह जल्दी उठे ओपनिंग सेरेमनी तो मिस कर दिया थोड़ा गेम देखे फिर आज सैटरडे है शॉपिंग का दिन था तो हमने शॉपिंग किया फिर घर वापस आकर वाइफ वो जॉब पे है तो कुकिंग वगैरह करे थोड़ा काम किए घर के फिर समय निकाल कर हम यहाँ आ गए
0: जी हाँ बिल्कुल और हम आशा करते हैं कि जो आपके बेटे आपको मदद करता होगा
2: जरूर जरूर आज सब्जी उन्हीं ने काटा है
0: नो वरीज तो चलो इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो ये ग्रैंड कीर्तन संध्या अनुगमन क्राइस्टचर्च इस नथिंग न्यू टू जब हम कीर्तन की बात करते हैं जो काफी मंडलीज यहाँ पे है क्राइस्टचर्च में बहुत सालों से और जो कीर्तन भजन सब चलते रहता है कभी कभी कवाली वगैरह भी हमें देखने को मिलता है और त्रिकुट्टू वगैरह काफी प्रसिद्ध है क्राइस्टचर्च में और This one is on 18th of July. तो आप बताइए धीरू जी कौन कौन कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं
1: जी हाँ यहाँ के तो एक हमारा खुद का अपना कलाकार है जो क्राइस्टचर्च का जिसका पहला बार हम लोग एक बार और स्टेज दिए थे लास्ट ईयर निमित ये भी बहुत अच्छे कलाकार हो गए अभी अभी अपना एक एल्बम भी निकाल दिया है तो

0: ये निमित्त है और दूसरा रानी भी जिसका पहला स्टेज हम ही लोग यहाँ पे क्राइस्ट में दिए थे तो वो भी आ रही है तो इस बार वो हम लोग ये सत्संग बॉयज उसको बैकिंग कर रहे हैं स्टेज पे और निमित्त के बैकिंग के लिए ऑकलैंड से टीम आ रहे हैं जो कि उसमें लिखा हुआ है जय भो बॉयज कि
1: हाँ निमित का लिखा हुआ है कि सपोर्टेड बाय भक्ति सत्संग बॉयज ऑकलैंड
0: ये सब जानते होंगे दिव्यन खवाल जो उसी का ग्रुप है वो भी शायद आएगा साथ में इसमें तो वो भी उनके कोरस टीम में होगा साथ में
1: ओके और ये आई मीन पोस्टर जो मैं देख रहा हूँ इनका फोटो देख रहा हूँ तो काफी यंग लग रहे हैं
0: हाँ बहुत बहुत कम है जो तो निमित तो भी हम लोग सामने से
1: बजाना
0: और उसके इसमें बढ़िया बात एक और क्या है कि इसका भाई वो ढोल बजा रहा है निखिल
1: हाँ हाँ दो भाई थे बहुत छोटे थे
0: दोनों बहुत छोटे
1: हाँ,
0: से
1: बहुत छोटे से जो बजाना शुरू कर देते
0: मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए स्पेशली इन लोगों के जो आजा जी है वो बहुत भारी टाइम निकालता है इन लोगों के वास्ते तो वो मुझसे भी कभी बोलता है कि कुछ रे बैठा ऐसे देखते रहना कुछ काम तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यंग टैलेंट आगे निकले तो इसीलिए तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे तो फिर क्राइसिस में कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ तो ताकि उनका भी कुछ नाम चले ना
1: जी हाँ सही बात और अगर धीरू जी की बात की है जो अभी हमें सुन रहे हैं स्पेशली जो हमारे जो फिजिक जो क्राउड है यहाँ क्राइसिस में तो दे आर ऑल अवेयर बिकॉज हार्डली कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे धीरू नजर नहीं आएगा विल बी देयर समहाउ कि चाहे स्टेज पे होगा कहीं भी वो सपोर्ट दिखेगा और कभी कभी वो स्टेज पे गाते भी हमें देखने को मिलेगा सो थैंक यू धीरू फॉर डूइंग दैट यू आर ऑलवेज देयर डजंट मैटर कौन कर रहा है कहाँ कर रहा है आप पहुँच जाते हो विच इज ग्रेट हमें ऐसे ही सहयोग की जरूरत पड़ती है और जब बात करते हैं ये सब हमारे जो कीर्तन भजन होता है या जिस तरह हम रामायण पढ़ते हैं ये सब हमारा अपना कल्चर है जो बहुत अभी तो गिरमिट डे भी आ रहा है तो उस पर भी मैं बोलूँगा कि एवरी टाइम वी कीप ऑन सेइंग दिस एंड द रीज़न फॉर सेइंग दैट इज बिकॉज ताकि हम बार बार आपको याद दिलाते रहे बस ये हमारे जो पूर्वज थे एंड फॉर देम इट वॉज वेरी प्रीशियस उन्हें लाना बहुत कुछ था लेकिन वो सभी कुछ तो नहीं ला पाए लिमिटेड था इसे कम ही कम उसको लाना था दे हैड टू चूज बट उन्होंने चूज किया जो रामायण बुक हुआ या ऐसा कीर्तन भजन वो सब बोला एफजी में और वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ से जब हम चले लाइक वी केम टू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं भी गए सो वी हैव केप्ट इट और काफी लोग हमें बोलते हैं इवन हमारे बहुत दोस्त है साथी है फ्रॉम इंडिया दे ऑलवेज है कि ना तुम्हारा काफी जो रामायण मंडली वगैरह हो रहा है ज्यादा करके जो लोग इंडिया से भी जल्दी आए हुए हैं तो दे मिस इंडिया कि वहाँ पे उन्होंने मंदिर वगैरह जाते थे ना तो यहाँ लोग पूछते कि मंदिर कहाँ है पे और फिर बोलते हैं कि तो तुम्हारे जो फिजी मंडली से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अभी भी उस तरह जो रामायण वगैरह कायम रखे हुए सो थैंक यू हम आप लोगों को शुक्रिया करेंगे संजय और धीरू फॉर डूइंग दैट और जैसे अभी आप बाद में अगर फेसबुक पर हम पोस्टर भी डालेंगे तो आप देखोगे कि जो ये जो कलाकार है दे आर वेरी यंग देखने में यंग है और निमित्त तो हमारा ही हम बच्चे कहेंगे हमारे सामने वो लोग बड़े हुए हैं दो भाई थे और बहुत प्रसिद्ध है बिकॉज बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के दोनों भाई जो बजाते थे गाते थे तो आज देखो बड़े हो गए और धीरू यू मेंशन कि उसके एल्बम निकला तो एल्बम क्या उसने यूट्यूब में डाला हुआ या
0: हम सोचता कि सीडी भी है यूट्यूब में भी है उसका तो उसका अभी लास्ट ईयर तो जाकर के हम सोचता हूँ इसका बैकअप यही बॉयज लोग किए थे ऑकलैंड का
1: No, we will try to find the link. पता लगाएंगे कि लिंक कहाँ पे then we will try to put it on this video as well. उस पर हम नीचे कॉमेंट्स में डाल देंगे so that you can go and look at it. काफ़ी अच्छी anyway, we actually हम encourage करते हैं हम चाहते हैं लोग थोड़ा सहयोग दें इस तरह के कलाकार के लिए so that हमारे जो बच्चे generation है जो अभी भी बच्चे होंगे एंड दे आर लर्निंग या टू एनकरेज देम बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर ऑफ दोस बिकॉज संजय हम आई थिंक हमारा तो कोई समय आएगा हम रिटायर तो होंगे ना किसी
2: जरूर जरूर
0: अभी ये एक शो और करके
1: फिजी में
0: हाँ जो खुद हमारा जो मंडली था वहाँ पे सूरी में नेताला से
1: सूरी
0: तो उसका ये भी ये लोग इसका नाना भी उन्हीं का
1: काफी बड़ी बात है कि हम ज्यादा करके सुनते हैं कि फिजी से कलाकार यहाँ आते फिजी से यहाँ आते थे नो जब कोई आता है जो कीर्तन भजन या फिर आई थिंक द अदर थिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था होली में क्या अपन गाते हो अलग अलग जगह का जो अलग अलग स्टाइल ऑफ फाग होता है ना वो लोग जब आते हैं तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है देयर वाज अ इवन टाइम जब हम ऑकलैंड से कलाकार आते थे लेकिन नाउ हमारे कलाकार जाकर फिजी में अगर परफॉर्म करते हैं तो बहुत बड़ी बात है
0: अभी रानी भी तो फिजी के दौरा पे है कुछ पूजा उन लोगों का पूजा के बाद में कुछ कीर्तन भी है उसका तो उसके बाद में वो आकर फिर यहाँ की तैयारी करेगी तो अभी मैंने उससे लाइटली बात किया था तो उसके पिताजी से तो उसने कहा कि जब हम लोग ये पीजी से आ जाए तो फिर हम उसका तैयारी में लगे क्योंकि हम लोग के भी इसके कोर्स के लिए
1: ना देट वॉज माई नेक्स्ट क्वेश्चन वही मैं नेक्स्ट पूछने वाला था कि

0: normally jo jahan ka hota unhi ka group unka jo backup karega na because saath saath mein practice wagera karna padega but yahan pe cross hai yani ki amit sorry nimit ka jo backup auckland wala jo satsang boys kar raha hai aur rani jo actually auckland ki hai uska backup aap log kar rahe ho to kaise aap log practice karoge
1: dekho kya hai ki hum log ke paas bojh isliye hum log training karte hain ki hum log sirf ये जानना है कि वो क्या गाएगा तो और फिर जैसे जो स्वर होता है राग होता है कैसे मिलाना है कैसे वॉइस मैच करना है वो सब हम लोग ट्रेनिंग में कर लेते हैं तो इसके लिए बहुत कड़ा नहीं होता है तो एक ट्रेनिंग हम लोग के लिए काफी होता है और फिर नॉर्मली जैसे ये पहली बार नहीं है हम लोग जैसे ये लगभग थर्ड होगा जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग करके नेक्स्ट डे हम लोग स्टेज उतरते हैं
0: ठीक है वैसे भी और भी सवाल है पूछने के लिए बट आई विल मूव टू संजय तो संजय आप बताइए कि ये जो टिकट प्राइस क्या है
2: टिकट का प्राइस $15 है उसमें खाना इंक्लूडेड है डिनर प्रोवाइडेड और हमने दो ड्रॉ भी रखा है पांच प्राइस है तो ये प्राइस सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उस दिन अटेंड करेंगे
0: रिटर्न फ्लाइट टू फिजी
2: रिटर्न फ्लाइट ये रखने के लिए महत्व ये है कि आप लोग पधारे और आकर हमारा शो देखे और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाए और हमारे धर्म के कार्यक्रम में आगे बढ़े
0: जी तो और ये जो $15 आप बोल रहे हो जो टिकट है लोग पे करेंगे I'm guessing it's pay person और is there any limit like बच्चों का
1: under 12
0: फ्री रहेगा
2: under 12 फ्री है
0: जी हाँ तो अगर आपको $15 पे करना है यू कैन कम और अंडर 12 फ्री रहेगा और जो $15 जब लोग पे करते हैं तो उसमें आपने भोजन आई थिंक मेंशन किया ना
2: जी जरूर
0: तो साथ में
2: डिनर प्रोवाइडेड है
0: जी
2: आप आए मनोरंजन उठाए काफी अच्छा भोजन होगा
0: जी हाँ बिकॉज आई थिंक पहले समय था कि आई थिंक कुछ $11-12 में आपको भोजन मिल जाता था बट आई थिंक अभी अगर आप भोजन अगर देखोगे तो आई थिंक
2: खर्च बढ़ गई है इसलिए हमको थोड़ा प्राइस ऊपर करना पड़ रहा है
0: तो आई थिंक $15 इन अ वे अगर आपको भोजन साथ में दे रहे हैं इट्स काइंड ऑफ रीजनेबल या चीप भी बोल सकते हो
1: अभी
0: सभी नहीं मिलता ना
1: अभी एक चीज पर हम लोग और उस पर थोड़ा बात कर रहे हैं कि जैसे अभी फ्यूल प्राइस बहुत महंगा है तो जैसे अगर शायद एस बेटन से उधर से कोई आया डाउन साउथ से तो शायद हम लोग फ्री एंट्री रखेंगे
0: ओके
1: उनके होम स्टूडियो का आकर किंचन सुने वो लोग ऑलरेडी उतना खर्चा करके आएंगे
0: फ्यूल फ्यूल लगता है जी
1: तो हम लोग वो अभी बात कर रहे हैं तो और इसमें सिर्फ हम लोग के ऊपर है हम लोग यहाँ अपना टिकट बेच ले तो उन लोगों को उतना फ्री कर सकते हैं
0: एग्जैक्टली तो आई थिंक द अदर थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट काफी लोग देख रहे हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है और काफी लोग है लाइक हु एक्चुअली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स बिकॉज वो काफी लोग है जो धर्म से काफी जुड़े हुए हैं एंड वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े लेकिन ऑब्वियसली अब सभी लोग के नहीं होता कि एवरीबॉडी हैज दैट टाइम टू डू इट आप लोग कर रहे हो तो समटाइम्स दे वांट टू सपोर्ट इन सम वे चाहे पैसे दे के जो कुछ भी हो चाहे ट्रांसपोर्ट या जैसे भी अगर सपोर्ट बन सके अगर दे सके तो संजय जी बताइए किसको लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है
2: जी हाँ प्रेसिडेंट धीरेन्द्र कुमार धीरू जो हमारे साथ बैठे हैं उनके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनका फोन नंबर है 0210537361 और हमारे ट्रेजरर साहब है बिमलेश शर्मा उसको भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0223789309 और सेक्रेटरी साहब है रवि कुमार आप उसको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0221532244 इसके अलावा दुकान में पोस्टर भी लगा है तो आप वहाँ पे भी ग्रोसरी शॉप जो इंडियन शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी पोस्टर लगा उस काउंटर पर जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको टिकट मिल सकता है
0: जी हाँ तो आप अगर टिकट लेना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दोस शॉप्स या तो फिर जैसे हाँ ये पोस्टर हम डाल देंगे फेसबुक में सो दैट इज इजी आपको नोट नहीं करना पड़ेगा सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम या फिर हमें भी आप संपर्क कर सकते हो हमारे पास अभी भी हाथ में जो टिकट रखा हुआ है अगर आपको चाहिए देन यू कैन ग्रैब दोस टिकट्स अदरवाइज डो पे तो हर वक्त रहता है ये टिकट्स अगर आप
2: नहीं मिला तो
0: डो पे तो जरूर मिलेगा बट अगर आप पहले से ले लोगे तो जैसे धीरू जी बोल रहे हैं कि उसको आंकड़ा मिल जाता है एंड दैट वाई ही कैन वेक आउट की जो लोग दूर से आते रहे फॉर एग्जाम्पल बेटन आई नो देयर मेनी जो मंडी उमरू तक है कभी कभी प्रोग्राम होता है लोग उमरू से भी आते हैं सो इफ दे वांट टू कम एंड ट्रैवल देन आई डू एग्री विद धीरू और हम कहेंगे काफी अच्छी बात कि आप लोग कंसीडर कर रहे हो कि उन लोगों को अगर फ्री एंट्री मिल जाए बट इट कैन ओनली हैपन इफ इट कैन बी सब्सिडाइज्ड और ये हो सकता है

0: अगर यहाँ के जो locals हैं, they can contribute by tickets. या तो फिर अगर आपको अगर donations वगैरह देना है, just because it's going to a good song, a good cause, और already जो group established है, satsang. Sanatan Satsang Boys Christ Church. So donation aap de sakte ho, and money will obviously go towards this event or maybe jo future event bhi hote rehta hai. I know this group is quite active. Aap log kafi jo kare karte rehte ho, and so that it can go towards that. So agar aapko paisa kuch hai, then do contact us. Feel free. Taki hum is vishay mein baat kar sake. Aur chalo Sanjay ji batana hai ki hume kahan pe aana hai.
1: Humko Templeton Hall pe aana hai. Wahan pe karyakram hoga. शाम को 7 बजे शुरू होगा. आप समय से आ जाइए. आपको पता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आप समय से आएंगे तो ज़्यादा गीत सुनने को मिलेगा, तो इसलिए आप समय पे आ जाइए.
0: आई थिंक क्रशेश या तो फिर न्यूजीलैंड का हम जनरली यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम का क्या हो जाता है कि अगर देर से स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन आप देर से खत्म नहीं कर पाओगे. आपको टाइम पे ही खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू क्लियर द होल, और समय पे होल पे देना पड़ता है. अगर आप टाइम पे होल क्लियर नहीं करोगे, नहीं सौंपोगे, देन दे एक्चुअली चार्ज पेनल्टी, तो काफी टूटा हो जाता है. तो इसीलिए इफ यू कैन सपोर्ट बाय कमिंग ऑन टाइम, ताकि जो जो लोग इस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स कैन स्टार्ट ऑन टाइम, ताकि एज संजय बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ कीर्तन लोग ज्यादा गा सके, या तो फिर जो प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग किया है ना, सभी आपको लोग सुना सके. तो अब ना हम चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है धीरू जी, इसमें कावा क्या क्या
2: ऑर्गेनाइज किया? कावा हम लोग सेल्स करेंगे, बट डिपेंड्स. अभी देखो, जिसे मैंने इसमें बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की, सब कुछ मैंने बहुत स्पॉन्सर खोजने की कोशिश किया, तो मैंने मुझको कुछ स्पॉन्सर से मिला, तब मैंने कुछ प्राइस लिमिट किया. अगर हमारा और जैसे कुछ और डोनेशन हो गया और टिकट अच्छा सेल्स हुआ, तो शायद कावा भी फ्री कर देंगे. तो ये सब डिपेंड्स ना.
0: मुझे मालूम है कि अभी कॉस्ट बढ़ चुका है, एवरीथिंग कॉस्ट, इवन खाने का अगर बात करोगे, कोई बना रहा जाए, पुलाव बनाओगे, जो भी बनाओगे, बट सामग्री बाय द टाइम आप बाय करते हो तो काफी हो जाता है. तो इट्स नॉट नो चीप दिस डेज.
2: और फिर कावा भी वैसे भी 170
1: बोल देता हूँ, ये फंड रेजिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने फॉर्म किया, क्राइसिस में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होता है. कहीं मरनी हो गया, रामायण हो गया, या कोई कार्यक्रम हो गया, तो हमको कॉल करते हैं सपोर्ट करने के लिए. तो हम उनके घर पर जाकर कीर्तन वगैरह, रामायण वगैरह में सपोर्ट करते हैं. तो हम उनसे कोई
2: पैसा
1: चार्ज या पैसा नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमको रन करने के लिए, हमारे संस्था के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत है. तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है. कुछ हमारे पास कुछ फंड आ जाए, और इसके बदले में हम आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बेहतर सेवा प्रदान कर सकें. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा वही है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम को रच रहे हैं. और आशा करते हैं वाइडा क्राइस्टचर्च आकर हमको सपोर्ट करे, ताकि फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़े तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे. तो यही हमारा उद्देश्य है.
0: जी बिल्कुल. तो जैसे आपने सुना है फ्रॉम संजय धीरू, इफ़ यू कुड सपोर्ट दिस गुड कॉज और हमारे धर्म के लिए है, तो दैट्स वन वे ओ द अदर, जिसे हमारे धर्म कहता है कि यू कैन सपोर्ट, अपना जो योगदान दे सकते हो, वन वे ओ द अदर, काफ़ी वाइज है. तो डू कॉन्टेक्ट देम अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हो या थॉट्स हो, या तो फिर आप डोनेशन देना चाहते हो, सो दैट इट इज़ अ सक्सेस. और जैसे हमारे वक्त कहते हैं कि ये एंड नहीं होता है, और ऑब्वियसली बिगिनिंग भी नहीं है, बट इट विल कीप ऑन गोइंग. बट आपका जितना सपोर्ट है, तो उसी पे आधार होता है कि आगे क्या होता है. और धीरू जी आप बताइए कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो कीर्तन भजन या कुछ होता है, उसका कोई थीम कुछ होता है, इसमें कुछ थीम वगैरह किसी थीम पे लोग गाएंगे?
2: ना ना,
0: जनरली
2: होगा. हाँ
0: जी, हाँ, तो सभी तरह की कीर्तन होगा.
2: हाँ, जैसे नॉर्मली शुरू होता है ना,
0: हाँ, गणेश
2: जी का करते हैं, सरस्वती का, फिर हनुमान जी का, इसी तरह से बस चलेगा सब कीर्तन.
0: जी हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है. तो जैसे हमने सुना कि जो निमित सिंह है, तो हमारा जो यहाँ का जो बच्चा है फ्रॉम क्राइस्टचर्च, और साथ साथ में जो रानी मुदलियार जी है, जो शी इज़ फ्रॉम ऑकलैंड, और अभी जैसे धीरू ने बोला है शी इज़ ऑन फिजी टूर. तो ये होगा, और द डेट इज़ 18th of July. आई थिंक सैटरडे पड़ता होगा.
2: सैटरडे,
0: जी हाँ. तो इट्स सैटरडे इवनिंग 7 PM, टेम्पलटन हॉल, जो 64 K Road है. और इफ़ यू कुड कम ऑन टाइम, बिकॉज कभी कभी ट्रैफिक, अभी तो ट्रैफिक भी बढ़ रहा है.
2: इसमें एक बात और बोल दे विनय जी, हम लोग इसे अभी जैसे जो साउंड सिस्टम हम लोग का है,

0: तो साउंड सिस्टम कैन इमेजेस कर रहे हैं और जो साउंड कंट्रोल करेगा वो डीजे मैक्स वो ऑकुलेंस भी आ रहा है तो क्योंकि मैं जहाँ पे अभी एक लेटली एक प्रोग्राम हुआ था मैंने देखा था तो इन लोग का साउंड सिस्टम से रखना दूसरा सिस्टम से उठाना क्योंकि बहुत जगह होता है बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट कर देते हैं दो स्पीकर रखे तो ये लोग क्या करते हैं तीन चार स्पीकर लाइन से रख देते हैं तो नॉर्मल साउंड तुम ऐसे सुनोगे कि
1: सराउंड होता है. थैंक यू सो मच बिकॉज एक्चुअली मेरा जो ईयर्स थोड़ा सेंसिटिव है ऐसा इनको पता है कि उतना लाउड में फिर मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ बिकॉज मैं बहुत नहीं स्टैंड कर पाता हूँ. मैं नहीं बोलता कि कोई बुरा गा रहा है कुछ है, बट ये है कि हमारा जो ईयर ड्रम सभी का अलग अलग होता है तो मेरा थोड़ा सेंसिटिव पड़ता है जब साउंड्स की बात आती है तो मुझे वो मीडियम ही चलता है. बहुत ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है. एक समय था जब नाइट क्लब्स वगैरह चल जाता था लेकिन अभी नहीं, अभी तो अफेक्ट हो रहा है सब तो. बट इट्स गुड कि आप लोग ये सब कर रहे हो. और चलो हमारे पास थोड़ा कुछ समय बचा है अकॉर्डिंग टू साहिल बिकॉज हमारे पास जैसे हमने बोला था एक इंटरव्यू हमने किया था डोमिनिक यांजिक जो लेबा कैंडिडेट है जो विग्रम जहाँ पे मेगन वुड्स अभी तक जो इलेक्शन की जो एमपी है तो उसकी जगह अभी ये खड़ा रहेगा आपकी इलेक्शन में क्योंकि अब एमपी जो मेगन वुड्स है शी इज नॉट गोइंग टू स्टैंड फेदर इन द इलेक्शन तो हम आपको सुनाएंगे. और जाते जाते द अदर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज आपके जो स्पॉन्सर्स है उनको आप याद करना चाहोगे?
0: जी हाँ, स्पॉन्सर्स ये लोग तो भाई मेन होते हैं हमारे लिए.
1: हाँ तो हम लोग शुरू करते हैं धीरू ऑटोमोटिव्स.
0: जी हमारा तो सभी जगह रहता है तो मनीष ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ये है और फिर यूनिक मोटर्स है, सैंडल पैनल एंड पेंट, धीरू ऑटोमोटिव और हमारे शायद तुम जानते हो रिचर्ड सेवक.
1: हाँ, रिचर्ड सेवक लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के जो रिचर्ड सेवक है जी
0: ये उसका है. और अभी हमारे एक नए पैनल बीटा भी पुराने बिजनेस खोले अपना कमलेश प्रसाद जी तो उसने भी कुछ हम लोग का सहयोग किया इसमें. और फिर एक अकाउंटेंट है शायद उन लोग जानने सरनस शरणा तो वो भी हम लोग के वो अकाउंटिंग करता है तो वो भी स्पॉन्सर किया. और एक हम लोग के इंडिविजुअल पेशन और उसने खुद अपने आप बढ़ा हमारे पास कि जब उसने देखा कि हम लोग ये कर रहे हैं तो उसने कहा कि क्यों नहीं हम भी इसमें मदद करें तो उसने भी हमको डोनेट करने की प्रोमिस की. और फिर सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी रूप प्रकाश जी बहुत हम लोग के हेल्प करते हैं सभी समय, हमारे ग्रुप में भी है तो वो भोजन दे रहे हैं और फिर दे नहीं रहे बना भी रहे हैं साथ में तो
1: जी. और शांडिल्स फेसबुक पे डाल देंगे. थैंक यू धीरू जी और संजय जी दोनों जन को आने के लिए हमारे प्रोग्राम में और बताने के लिए की मोर अबाउट दिस जो अभी आपका इवेंट हो रहा है. और हम चाहेंगे जो लोग हमें अभी फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फिर जो फ्रिक्वेंसी पे भी सुन रहे हैं आगे चल के सुनेंगे भी, इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट anyway donations वगैरह से individual भी आपको देना है या तो गुप्त दान भी करना है then do contact these organizers.
0: सही बात किया कि अभी गुप्त दान हम लोग को कुछ मिला हुआ है तो उन लोगों कहा कि नाम नहीं बोला तो हम लोग अच्छा डोनर दिए तो उसने कहा कि हमारा नाम नहीं बोलना तो
1: जी हाँ. तो अगर आपको ऐसा भी कुछ करना है तो कीजिए बिकॉज वंस अगेन ये जो हमारे धर्म की बात आती है और अभी जो स्थिति चल रही है जो भी चल रहा है तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ताकि हम अपना जो धर्म बचाए रहे और हमारा जो सनातन का जो झंडी हर वक्त लहराते रहे. तो इसके आपके हाथ पे हमारे जो यहाँ पे धीरू जी संजय उसका जो पूरे जो टीम है सत्संग बॉयज है हम सबको शुक्रिया करना चाहेंगे कि दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब. एंड ऑफकोर्स जो पंडित जी जो हमेशा खड़े रहते हैं पीछे आपके तो थैंक यू सो मच. तो हम यहीं पर अपना जो लाइफ एंड करेंगे लेकिन जो लोग हमारे फ्रीक्वेंसी पे आप सुनते रहिए क्योंकि इसके बाद में आपको जो हम इंटरव्यू सुनाने वाले हैं. सो शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच.